0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. On the occasion of India's 80th Independence Day, we now take you over to Red Fort for the live broadcast of the flag hoisting ceremony and address to the nation by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. Our commentators are Sri Kaushik Roy, Srimati Anup Kaur, and Sri Munish Jolly.
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले में। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है।

नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया।

देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को

सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य स्तर लाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज

से 12 साल पहले हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है। और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया।

सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई। और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वह बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है, और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है, और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब

40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है, और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है, और इसे मैं चाहूंगा कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर, कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे।
और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।

और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहें हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं।

नहीं, दुनिया के स्विफ्ट आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है, योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का, हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से कर और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सात शक्तियां, सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ

उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न रखते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए हैं। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया है। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम

हम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है, भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है, देखिए नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ...2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है, मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है, स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है, करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,

हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ

जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप
जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित

सिद्ध हुई है, वो कालबाह्य हो चुकी है। और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं, वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। सर, मेरी बेटियों की ताकत कैसी है? मैं पिछले दिनों सांगन में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था, वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं, सभी नौजवानों से मैं चाहता

चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका एक या दो घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा एक दो घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी, इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
3: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
2: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: শাড়ি কুঠি সর্বভারতীয় শাড়ি ও টাঙ্গাইল শাড়ির প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা শাড়ি কুঠি প্রোপাইটার ননিগোপাল দাস।
2: অবিশ্বাস্য কম দামে অনবদ্য টাঙ্গাইল শাড়ির সেরা সম্ভার শাড়ি কুঠি।
0: থোড়ি সি বাতে আর ঢের সারে গানে আপ সুন রহে হ্যায় ননস্টপ গপশপ, ননস্টপ গপশপ 107 এফএম রেইনবো পর, ননস্টপ গপশপ, ননস্টপ গপশপ 107 এফএম রেইনবো পর, এফএম রেইনবো পর।
3: नमस्कार, 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं देवजानी, 10:17 और 45 सेकंड्स सुबह है आजादी की। आप सभी सुनने वालों को हमारी ओर से अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आजादी दिवस मुबारक हो।

15 अगस्त एक तारीख जो हर भारतीय के दिल में कुछ अलग ही भाव जगाती है। तिरंगे के तीन रंग दिखाई देते हैं, राष्ट्रगान की धुन सुनाई देती है और इतिहास के वे अनगिनत चेहरे हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन आज का 15 अगस्त कुछ और भी कहता है। यह हमें पीछे मुड़कर देखने के साथ साथ आगे देखने को भी कहता है। 1947 में हमने स्वतंत्रता हासिल की थी, आज 2026 में हम स्वतंत्रता का 80वां वर्ष मना रहे हैं और हमारे सामने है एक सवाल कि भारत को हम आगे चलकर किस रूप में देखना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जो केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो या एक ऐसा भारत जो शिक्षित हो, स्वस्थ हो, आत्मनिर्भर हो, तकनीकी रूप से सक्षम हो, पर्यावरण के प्रति सजग हो और जहां विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। जी हां, स्वतंत्रता दिवस हमें पीछे मुड़कर देखकर आगे के लिए भावनाएं, उम्मीदें और मकसद सजोने को कहता है।

विद्रोह था, कहीं आंदोलन था, कहीं जेल की यातनाएं थीं, तो कहीं अपने प्राणों की आहुति। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों तक ये आजादी किसी एक व्यक्ति, एक विचार या एक आंदोलन की देन नहीं थी। ये करोड़ों भारतीयों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम थी। और इसीलिए स्वतंत्रता या स्वतंत्रता दिवस हमें केवल गर्व नहीं देता, वो हमें जिम्मेदारी भी देता है। आइए पता करते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में और क्या क्या हुआ था जिसके लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों में लिखा है। 1914 में जापान मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ था आज के ही दिन, और 1945 में जापान पर विजय दिवस, जापान का आत्मसमर्पण दूसरे विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है आज के दिन को। 1947 में आज के ही दिन हमारे देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और देश भारत 1950 तक एक डोमिनियन बना रहा। 1948 में दक्षिण कोरिया गणराज्य को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया आज के दिन को। 1950 में सुकर्णो ने इंडोनेशिया के एकात्म गणराज्य की घोषणा की और इसके पहले राष्ट्रपति बने। 1960 में कांगो गणराज्य को फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1971 बहरीन को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी आज के ही दिन। क्या बात है, ब्रिटिश ने सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई और देशों को छोड़ा था आज के दिन। 1975 में बांग्लादेश में सेना के अधिकारियों ने सैन्य का तख्ता पलट कर दिया था और निर्वाचित राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी थी। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जय भादुड़ी, संजीव कुमार द्वारा अभिनीत भारतीय एक्शन एडवेंचर फिल्म शोले 1975 में आज के ही दिन रिलीज हुई थी और यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म उस समय की बन गई थी। 2015 में उत्तर कोरिया ने अपना स्वयं का समय क्षेत्र बनाया और अपनी घड़ियों को आधा घंटा पीछे करके GMT प्लस 8.5 आवर्स पर सेट कर दिया। यूं तो हर दिन किसी न किसी का जन्म होता है, किसी न किसी हस्ती का जन्म, उनकी जयंती हम मनाते हैं और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन आज का दिन कुछ खास इसलिए भी है कि आज आप अपना जन्मदिन देश की आजादी के साथ, आजादी के दिन के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर आज 15 अगस्त को आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि आप अपना जन्मदिन किन लोगों के साथ साझा करते हैं। 1769 सैन्य नेता सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म फ्रांस के कोर्सिका प्रांत में आज के ही दिन हुआ था। 1872 में औरबिंदो घोष यानी ऋषि औरबिंदो, भारतीय गुरु और राष्ट्रवादी, उनका जन्म कलकत्ते में हुआ था। 1945 में बांग्लादेशी राजनीतिक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी बेगम खालिदा जिया का जन्म हुआ था आज के ही दिन। में आज के ही दिन पैदा हुई थी अभिनेत्री राखी या राखी गुलजार। 1963 में जन्मे अंग्रेजी क्रिकेटर और विकेट कीपर जैक रसल। आज अपना जन्मदिन मना रही हैं डालस टेक्सस में जन्मी अमेरिकी फिलान्थ्रोपिस्ट और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा गेट्स, जिनका जन्म 1964 में टेक्सस में हुआ था। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं

Magic Bean. अगस्त 1947 को भारत ने लगभग दो शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई। उस स्वतंत्रता के पीछे एक लंबा संघर्ष था। कहीं सत्याग्रह

हैं अमेरिकी एकेडमी पुरस्कार विजेता अभिनेता पटकथा लेखक बेन अफ्लेक, जिनका जन्म 1972 में आज के ही दिन हुआ था बर्कले कैलिफोर्निया में। आज अपना जन्मदिन मना रही हैं अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस भी, जिनका जन्म 1990 में लुइसविल केंटकी में हुआ था।

आज हम स्वतंत्र हैं, हम अपने विचार बिना किसी झिझक के डर के व्यक्त कर सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं, अपना भविष्य चुन सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है जब हर नागरिक को सम्मान और अवसर मिले, और ये समान हो। जब कोई बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित ना हो, जब किसी बेटी को अपने सपनों के लिए संघर्ष न करना पड़े, जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, भाषा, धर्म या आर्थिक स्थिति के कारण भेदभाव ना हो, और जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें, क्योंकि आजादी का अधिकार जिस तरह से हमें है, उसी तरह से हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। हम अक्सर देश से पूछते हैं, देश ने हमें क्या दिया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस शायद हमसे एक अलग सवाल पूछता है, हमने अपने देश के लिए क्या किया।

0: चुटकी नुस्खे। जी हाँ, हमारा यूजुअल सेगमेंट एक चुटकी नुस्खे। 10:51 और 35 सेकंड समय हो रहा है। हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हमें आराम की जरूरत होती है। दिमाग हमसे आराम करने को कहता है, लेकिन शरीर की थकान न तो आराम करने देती है और न ही काम। ऐसे वक्त में कुछ नुस्खे आपको थकान और शारीरिक समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारा दाहिना कान बातों और शब्दों को बेहतर सुन सकता है, जबकि बाएं कान से संगीत बेहतर सुना जा सकता है। तो आप ये सोच लीजिए कि फोन पर बातें करते समय किस हाथ से और किस कान से आप बातें सुनेंगे। गर्म पानी से नहाने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी शरीर पर, खास करके बालों में यानी कि स्कैल्प में और चेहरे पर डाल दीजिए। इससे आपकी त्वचा खूबसूरत रहेगी, क्योंकि गर्म पानी अक्सर हमारे त्वचा से मॉइस्चर जो है, नमी जो है, उसे सोख लेता है। और आप नहाने के तुरंत बाद ही ठंडे पानी को लगाएंगे अगर अपने चेहरे पर, अपने बालों में, तो त्वचा के ड्राई होने की जो समस्या है ये कम हो जाएगी। अगर माइग्रेन का दर्द नहीं जा रहा तो अपने हाथों को बर्फ के ठंडे पानी में डालिए, दर्द काफी हद तक खत्म हो जाएगा। बेवक्त अगर नींद आ रही है तो अपनी सांसों को थाम ले जब तक आप उसे रोक सकते हैं, फिर सांसें छोड़ दें, नींद गायब हो जाएगी। मच्छर के काटने की जगह पर खुजली हो रही है तो उस जगह पर डीओ लगा लीजिए, खुजली तुरंत बंद हो जाएगी। चक्कर आना नहीं रुक रहा तो बिस्तर पर लेटकर एक पैर जमीन पर रखिए, इससे दिमाग खुद को स्थिर कर लेगा और चक्कर आने बंद हो जाएंगे।
1: एक चुटकी नुस्खे।

10:54 और देखते ही देखते हमने सफर तय कर लिया। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप का हाथ थामकर। हर सफर को खत्म होना ही होता है, हर सफर को मंजिल तक पहुंचना ही होता है। जरूरी नहीं है कि ये वो मंजिल हो जिसे आपने मन ही मन तय कर रखा है। हो सकता है आपकी जो मंजिल हो वो आपसे बेहतर आपकी किस्मत को पता हो। तो मंजिल चाहे जो भी हो, सफर का मजा लेते रहिए।

इवेंट्स इन कोलकाता आज क्या क्या है जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। कई सारे इवेंट्स हैं जैसे कि मैजिक शो बाय डी सरकार, आज एक मैजिक शो, और इसी तरह से कई सारी वर्कशॉप्स, पेंटिंग वर्कशॉप, पॉटरी वर्कशॉप, ज्वेलरी मेकिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी इवेंट्स आज हैं। और इसके साथ ही साथ नाटक या फिर शोज़ भी बहुत सारे हैं शहर में, आप सिर्फ अपने मन मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उन्हें चुन लीजिए और उनमें से किसी एक में शामिल हो जाइए। और कुछ नहीं तो आज का दिन, आज़ादी का दिन, आज़ादी से गुजारिए, अपने मन की सुनिए, अपने मन की कीजिए। और फिलहाल देवजानी को दीजिए नॉनस्टॉप गपशप कार्यक्रम से और एफएम रेनबो से इजाजत। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एफएम गोल्ड पर 11:10 पर। सुनते रहिए हमारे साथ, बने रहिए।

0: কানে বাজুক মনের রেডিও, শুনছো 107 FM রেইনবো, সাত সুরে সারাদিন, সাত সুরে সারাদিন।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: शुंचो 107 FM रेनबो, सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
3: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक मन।
4: ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের এই দিনে আবারও সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে FM রেইনবো পক্ষ থেকে আর যে অম্বালিকা আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। এবং আজকের গান দরিয়া অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত গান, অর্থাৎ স্বদেশ পর্যায়ের গান, স্বদেশ ভাবনা, সেই সা নিয়েই কিন্তু রয়েছি আমি, থাকছি ঠিক একটা পর্যন্ত।

0: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

नमस्कार दोस्तों, आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, आज का दिन उस एहसास का नाम है जिसे हम कहते हैं आजादी। तिरंगे की तीन रंगों में सजे इस खूबसूरत दिन पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम तीन का तड़का। और आज का ये तड़का थोड़ा खास है क्योंकि इसमें है देशभक्ति का जज्बा, बॉलीवुड का रंग, संगीत की मिठास और उन वीरों को नमन जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आज है 15 अगस्त 2026 भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस। तो आइए आज की संगीत यात्रा की शुरुआत करते हैं उस गीत से जो हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की लौ जगा देता है। तो दोस्तों, आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट अंदोज ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को यानी कि आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम तीन का तड़का सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर हमें आज़ादी ना मिली होती तो ना अपनी पसंद से बोलने की आज़ादी, ना अपने सपनों को अपनी राह देने की आज़ादी और ना अपने देश को भविष्य चुनने का अधिकार। लेकिन लाखों भारतीयों ने उस आज़ादी के लिए संघर्ष किया। 15 अगस्त सन 1947 वह ऐतिहासिक दिन जब भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह दिवस हमें उस ऐतिहासिक बदलाव की याद दिलाता है जिसने भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की। और इस आजादी के पीछे सिर्फ कुछ बड़े नाम नहीं थे, इस कहानी में किसान थे, विद्यार्थी थे, महिलाएं थीं, मजदूर थे, लेखक थे, पत्रकार थे और अनगिनत ऐसे आम भारतीय थे जिनका नाम इतिहास की किताबों में शायद बहुत बड़े अक्षरों में ना नहीं लिखे गए हो, लेकिन जिनका योगदान आजादी की कहानी का अहम हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, आज उन्हें याद करते हुए एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: तो दोस्तों आज मैं आप सभी को भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। साथियों, जीवन अनमोल है लेकिन जीवन अनिश्चित भी। किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है घर का कमाने वाला व्यक्ति। अगर किसी कारणवश उसकी असमय मृत्यु हो जाए तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे ही संकट के समय परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। यह योजना खास तौर पर आम नागरिकों को कम प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह है कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसके परिवार या नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। यह बीमा सुरक्षा पूरे 1 वर्ष के लिए होती है और हर साल स्वतः नवीनीकरण किया जा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका कम प्रीमियम, इसमें केवल 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है, जो सीधे बैंक खाते से स्वतः कट जाता है, यानी साल भर की सुरक्षा, वो भी बहुत कम खर्च में। इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो और जिनका बैंक खाता हो। बैंक खाता होना आवश्यक है क्योंकि बीमा राशि और प्रीमियम दोनों बैंक के माध्यम से ही संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किसी भी सरकारी या निजी बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जन धन खाते के माध्यम से लिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बैंक जाकर या बैंक की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से इस योजना से जुड़ा जा सकता है। साथियों, इस योजना का उद्देश्य केवल बीमा देना नहीं है बल्कि देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि किसी परिवार को अचानक आई विपत्ति के कारण आर्थिक रूप से टूटना ना पड़े। आज के समय में जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सामने आती है। यह योजना गरीब, मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है तो अवश्य इस योजना से जुड़े और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: देश मेरा रंगरेज़ ये बाबू, घाट घाट

1942 का वह आंदोलन आने वाले वर्षों की निर्णायक घटनाओं का हिस्सा बना और फिर आया 15 अगस्त सन 1947 आजादी की वह सुबह जिसका सपना पीढ़ियों ने देखा और आज हम ये दिवस मना रहे हैं। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हमें आजादी कब मिली, सवाल यह भी है कि हम इस आजादी की कीमत को कितना समझते हैं। तो दोस्तों आज का तड़का भी तीन रंगों वाला है। केसरिया साहस और त्याग की याद दिलाता है, सफेद शांति और सत्य की भावना से जुड़ा है और हरा समृद्धि और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इन तीनों के बीच हमारा अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यानी तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हमारे इतिहास हमारी आशाओं और हमारे भविष्य का प्रतीक है। तो चलिए इसी जज्बे के साथ अगले गीत की ओर बढ़ते हैं।

दोस्तों, अगस्त का महीना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। इसी महीने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये जो घटनाएं हुई, इसी कारण से इस महीने को क्रांति का महीना बताया गया। 1942

दोस्तों, अब कुछ पल बिल्कुल दिल से उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, उन माताओं के लिए जिन्होंने अपने बेटे को देश के नाम कर दिया, उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोकर भी देश की आजादी के सपने को जिंदा रखा। और उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिनके संघर्ष की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। आज का दिन उत्सव का दिन है, लेकिन यह कृतज्ञता का दिन भी है, क्योंकि दोस्तों, आजादी सिर्फ मिली नहीं थी, इसे पाने के लिए पीढ़ियों ने अपने सपने, अपना सुख और अपना जीवन लगाया था।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

दोस्तों, अगर आज हमारे बीच वे स्वतंत्रता सेनानी होते तो शायद हमसे यही कहते, आज़ादी को सिर्फ उत्सव मत बनाना, इसे जिम्मेदारी बनाना। तिरंगे को सिर्फ हाथ में मत रखना, उसकी गरिमा को अपने व्यवहार में रखना। देश में सिर्फ लेना मत, देश को अपना योगदान भी देना, क्योंकि देश सिर्फ सीमा से नहीं बनता है, देश बनता है हमसे, आपसे, हमारे परिवारों से, हमारे शहरों से और हमारे गांव से और हमारी सोच से। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम 3 का तड़का का ये खास सफर यहीं समाप्त होता है। आज हमने आजादी की कहानी को याद किया, शहीदों को नमन किया और तिरंगे की भावना को महसूस किया और यह समझने की कोशिश की कि आजादी सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। तो आइए, आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने दिल में एक छोटा सा दीप जलाएं, देश को बेहतर बनाने का दीप। किसी एक जरूरतमंद की मदद करेंगे, किसी एक बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे और सबसे बढ़कर अपने देश की एकता का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ गीतों से नहीं, हमारे कर्मों में भी सुनाई देनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति और आप सभी से इजाजत लेती हूं। फिर मिलेंगे कार्यक्रम 3 का तड़का में एक नए दिन, नए गीतों और नई बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए और अपने दिल में हिंदुस्तान को बसाए रखिए। और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

0: বাড়ি হয়ে যাবে, মানে বিদ্যুতের বিল আসবে জিরো। আর উৎপাদিত বিদ্যুৎ অতিরিক্ত হলে বিদ্যুৎ গ্রিড বিক্রি করে অর্থ উপার্জনও সম্ভব। তাহলে অপেক্ষা কিসের, এখনই রেজিস্টার করুন pmsuryaghar.gov.in।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
3: তুমি শুনছো উইকেন্ড ক্যাফে 107 FM রেনবোতে। উইকেন্ড ক্যাফে, উইকেন্ড ক্যাফে।

0: Snowbird by Annie Murray, a song about living, a song about movement and the desire to escape. And isn't that one of the greatest contradictions of life, listeners? Sometimes we travel because we want to discover something new, and sometimes we travel because we don't want to face where we are. Bad Blake has spent years on the road, one town, one bar and one performance. But we will get to know more about this particular movie and the character, but right after a very, very short break. Stay tuned to 107 FM Rainbow.
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था

0: लक्ष्य राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: আরে রিমা, সোলার প্যানেল লাগিয়ে নাও, সোলার প্যানেল লাগিয়ে নাও। কবে থেকে আমার সব বন্ধুরা বলতো, কিন্তু আমি মেনে নিয়েছি যবে থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন।
2: ভারত সরকার কা লক্ষ্য সোলার পাওয়ার সে বিজলি বিল জিরো করনে কা ভি হ্যায়।
1: আমি প্রধানমন্ত্রী জির কথায় সোলার প্যানেল লাগিয়েছি আর আমার বিদ্যুৎ বিল জিরো এসেছে। আপনিও লাগিয়ে নিন।
3: পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা আজই রেজিস্টার করুন pmsuryaghar.gov.in।
4: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
0: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
5: सो लिसनर्स, वी वर टॉकिंग अबाउट बैड ब्लेक। That was a short break and we are back on 107 FM Rainbow. We are talking about the movie that has stolen hearts and the movie that will if you constantly watch it. Bad Blake has spent years on the road. One town, one bar and one performance and then another. But the road doesn't always take us somewhere, right? Sometimes it simply helps us avoiding arriving anywhere. And the movie Crazy Heart is in many ways the story of a man who finally has to stop running. Stop running from his past, stop running from his failures, and most importantly, stop running from himself. Happy listening.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 7:03 पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
0: जी हाँ, छाया लोक के प्रोग्राम का नाम, और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर। आज है सैटरडे का दिन, तो सुनेंगे
1: जाने अनजाने।
0: तो दोस्तों, जाने अनजाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। यूजुअली जाने अनजाने फिल्मों पर बेस्ड होता है, पर आज का दिन थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम सिर्फ 15 अगस्त नहीं मना रहे, आज हम उस रात को याद करने की कोशिश करने वाले हैं जाने अनजाने में, जिस रात एक देश ने सदियों की गुलामी के बाद पहली बार आज़ादी की सांस ली थी। लेकिन एक सवाल आपसे है, जी हाँ आपसे सवाल ये है कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है। अपनी मर्जी से जीना, अपने सपने पूरे करना, या अपनों के साथ सुकून से रहना। आप सिर्फ एक चूज कीजिएगा, और मैं चाहती हूं कि आप फोन करें और हमें बताएं साथ ही। अगर आपको बोलूं कि आज 1947 की उस रात में, 14 अगस्त की उस रात को पहुंचा दिया जाए, तो अब क्या देखना चाहेंगे? तिरंगे, सड़कों पर जश्न, मिठाइयां, नारे, या फिर एक ऐसा भारत जो आजादी के ठीक पहले बेचैनी की करवटें बदल रहा था। और अगर मैं आपसे कहूं कि उसी रात जब कुछ लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग अपने घर की आखिरी रात काट रहे थे, तो यही तो है आज की कहानी। क्योंकि 15 अगस्त की कहानी सिर्फ आजादी की कहानी नहीं है, ये इंतजार की कहानी है, ये उम्मीद की कहानी है, ये बलिदान की कहानी है, और आगे चलकर ये बिछड़ने की कहानी भी बनने वाली है। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे उस रात से जब भारत सो नहीं रहा था।

0: तो दोस्तों ब्रे, इस गाने से पहले मैंने आपसे पूछा था सवाल कि आपके लिए आजादी का मतलब क्या है, अपनी मर्जी से जीना, अपने सपने पूरे करना या अपनों के साथ सुकून से रहना। तो कौन सा आंसर अब चूज करेंगे और देख लेते हैं सिद्धांत पर कि कौन सा आंसर चूज होता है हमारे पहले लिसनर द्वारा। हेलो, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: मैं
0: मुनिर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, दो सलामी तिरंगा को जिसमें हमारी शान है, दो सलामी तिरंगा को जिसमें हमारी शान है, सर अपना ऊंचा रखना जब तक तुमके जान है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
1: और टॉपिक के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ, अफकोर्स अपनों को साथ में सुकून से रहे, ये तो हमारा ख्वाहिश है, लेकिन सिर्फ खुद नहीं दूसरों को सुकून से रखना हमारा फर्ज बन गया। ये है
0: स्वाधीनता,
1: फ्रीडम।
0: ओके, बहुत अच्छे। मतलब आप सिर्फ अपना और अपनों का नहीं दूसरों का भी सोच रहे हैं।
1: स्वाधीनता मतलब खुद सुकून से रहे और दूसरों को सुकून से बचने का मौका दे।
0: ओके, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए आज के दिन, और होपफुली आज का दिन काफी अच्छा गया होगा आपका। हेलो,
1: बोलिए।
0: होपफुली आपका दिन काफी अच्छा गया होगा आज का।
1: ऑफकोर्स हमारे बेटी स्कूल में पार्टिसिपेट किया और घर घर तिरंगा है, उसमें हमारे बेटी के स्कूल में कुछ डांस है और मेरा मुल्क मेरा देश गान में डांस किया एवं वो ग्रुप डांस था
0: जी।
1: और प्रोसेशन भी निकला स्कूल से, वो हमारे देश प्रेमियों के तस्वीर को लेकर और हमारे इंडियन फ्लैग को लेकर टीचर और मैम के साथ सब स्टूडेंट गया। और हमारे घर में तो फ्लैग उठाया बाहर में, घर का बाहर में
0: जी।
1: और हमारा आसपास में बहुत सारे क्लब, बहुत सारे जगह में स्कूल में तो फ्लैग उठाया, बहुत सुकून से दिन बिताया।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: और दिल जाले प्रेम का गाना है, मेरा मुल्क मेरा दिल,
0: ठीक है,
1: और कुमार शानू और आदित्य नारायण का
0: गाना है।
1: ये गाना सभी श्रोताओं के लिए, खास करके आपको और सोमनाथ घोष के लिए। थैंक यू मैम,
0: थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, गुड नाइट। तो थे हमारे साथ मुनिरुद्दीन दा और बातें की हमने ढेर सारी। फिलहाल चलिए उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना सुन लिया जाए।
2: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
3: क्या कहती हो शामू की माँ?
2: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।

दोस्तों कल्पना कीजिए, साल 1947, कैलेंडर पर तारीख है 14 अगस्त। दिल्ली में गर्मी है, हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। लोगों को पता है कि कुछ घंटों बाद इतिहास बदलने वाला है। आज की तरह हर हाथ में मोबाइल नहीं, हर घर में टीवी नहीं, इंटरनेट नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं।

0: लेकिन एक चीज है, रेडियो। और उस समय रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, रेडियो देश से जुड़ने का जरिया था। लोग रेडियो के सामने बैठते थे कान लगाकर, सांस रोककर हर शब्द सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था आज जो आवाज रेडियो से आएगी वो आने वाले भारत की पहली आवाजों में से एक होगी। एक घर की कल्पना कीजिए, पुराना सा मकान, आंगन में चारपाई, एक कोने में लालटेन और कमरे में रखा हुआ एक रेडियो। घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य रेडियो के पास बैठे हैं। उनके चेहरे पर उत्साह है, लेकिन आंखों में कुछ और भी है, शायद सालों की थकान, शायद इंतजार, शायद उन लोगों की याद जो आज इस दिन को देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहे। पास में उनका बेटा बैठा है, बहू बैठी है, बच्चे बैठे हैं। छोटी बच्ची बार बार पूछ रही है, दादाजी आज क्या होने वाला है? दादाजी मुस्कुरा कर कहते हैं, भारत आजाद होने वाला है। बच्ची फिर पूछती है, तो कल से क्या होगा? दादाजी शायद कहते, कल से हम अपना देश खुद चलाएंगे। बच्ची कुछ पल सोचती, फिर पूछती, अंग्रेज बिल्कुल नहीं होंगे? घर में हंसी फैल जाती, लेकिन दादाजी शायद उस हंसी में शामिल होकर भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें पता है आजादी के इस सुबह तक पहुंचने में कितनी रातें लगी। फिलहाल आजादी के बारे में ही जान लेते हैं कि उनकी राय क्या है, जो हमारे लिसनर है, हमारे जो अगले लिसनर है, वो क्या आजादी के बारे में सोचते हैं, क्या है उनके लिए आजादी, जान लेते हैं उनसे। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके परिवार को भी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
1: जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वेलकम। मैं पारस पंडित चुचा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी पारस जी, कैसे हैं सब, घर परिवार में सब सुखद मंगल ना?
1: जी दीदी, घर पर, घर परिवार पर सब ठीक है, बस है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहिएगा सब मिलकर।
1: जी आप भी स्वस्थ और मस्त रहिएगा और इसी तरह प्रोग्राम में आते रहिएगा।
0: जरूर बिल्कुल। बताइए आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से जीना, अपने सपने पूरे करना है, या फिर अपने के साथ सुकून से रहना?
1: जी आजादी का मतलब तो यही होना चाहिए कि अपने परिवार के साथ सुकून से रहना। और तभी हम सुकून से रह पाएंगे जब देश सुकून से रहे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो देश के वीर जो देश के प्रहरी है और उन्हीं के कारण हम लोग दिन, वे लोग तो दिन रात प्रहरी के रूप में रहते हुए देश की सुरक्षा करते हैं, तभी हम लोग सुरक्षित।
0: बिल्कुल।
1: और हम लोगों को भी उनका नमन और प्रणाम करना चाहिए कि वे दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर भी हमारे देश की सुरक्षा करते
0: हैं, हमें अपने परिवार से जुड़े रहते हैं।
1: जी जी जी जरूर। तो शहीदों को तो नमन है ही है, और अभी जो वीर सिपाही हमारे लिए देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनको भी नमन।
0: जी चलिए, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें करने के लिए, और होपफुली आज का दिन, जो जितना दिन शेष है, वो बहुत अच्छे से बीते आपका। तो गाना कौन सा सुनना चाहते हैं ये बताइए।
1: आप एक फाइटर का हीरी गाना सुना दीजिए।
0: ओके चलिए ठीक है, सुनते हैं गाना। ओके, और वापस मुलाकात होगी आपसे जरूर। गुड नाइट।
1: जी धन्यवाद, गुड नाइट,
0: थैंक यू, अच्छे से रहिएगा। तो चलिए फाइटर का सुन लेते हैं, हीर आसमानी, विशाल दल्लानी, शेखर विजयानी और बीप राख की आवाज में। साथ ही साथ बैक टू बैक अगला गाना हम सुनेंगे शाश्वत सचदेव की आवाज में, जो है फिल्म किल से। तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो
1: जय हिंद
0: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम,
1: माता की जय।
0: जी, भारत माता की जय।
1: आपिया जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस मुल्क की सरहद की लेकिन वाण है आपकी।
0: क्या बात है। तो बताइए,
1: मुझे यादगार का एक गीत सुनना है और मेरे श्रोता हमारे से अभी सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा।
0: जी जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप बताइए हमारे श्रोताओं की आपका वो जो खास तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, वो जरूर बताइए। और साथ ही साथ जो मेरा सवाल था सबसे आज,
1: होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
0: जी श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से नाम बताने के बाद। और मैंने पूछा था आप सबसे सवाल कि आपके लिए आजादी का मतलब क्या है, अपनी मर्जी से जीना, अपने। चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया किसी वजह से। फिलहाल सुन लेते हैं उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना हम सब मिलकर।

0: तो सुन रहे थे दोस्तों आप बिस्मिल फिल्म हैदर से सुखविंदर सिंह की एवं साथियों की आवाज में। फिलहाल हमारे साथ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं हमारे अगले कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हाय

दोस्तों, कभी कभी देश का इतिहास तारीखों से नहीं समझ आता। उसे समझने के लिए हमें उस समय के किसी घर में बैठना पड़ता है, किसी बूढ़े की आंखों से देखना पड़ता है, किसी बच्चे का सवाल सुनना पड़ता है और किसी माँ की चुप्पी को समझना पड़ता है। तो आइए उस दौर की एक आवाज के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ,

0: दोस्तों, आज भी जब हम वंदे मातरम सुनते हैं और गाते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, लेकिन सोचिए उस समय किसी आंदोलनकारी ने इसे सुना होगा तो उसके लिए कैसा रहा होगा। शायद ये सिर्फ गीत नहीं था, ये याद दिलाता था कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे एक देश है, एक मिट्टी है, एक सपना है, और उस सपने के लिए कुछ भी सहना पड़े तो सहेंगे जरूर। फिलहाल हमारे अगले कॉलर हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं कि कौन है।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में। जी राजकुमार जी, कैसे हैं, सब ठीक ठाक? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू, बताइए।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए। हाँ जी बिल्कुल बताइए। हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही है हमें। हेलो, हेलो राजकुमार जी, हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही हमें। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गाने
0: की
1: बोला
0: है
1: गाना
0: गा
1: बता
0: जी।
1: हेलो, हाँ
0: गाना गा रहे हैं। वाह बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो आप उपकार फिल्म से ही गाना सुनना चाहेंगे?
1: उपकार
0: जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। वापस मुलाकात होगी, बाय। तो सुन लेते हैं फिल्म उपकार से, ये आखिरी घंटे में हम इस आखिरी नहीं इस पहले घंटे का ये आखिरी गाना महेंद्र कपूर एवं साथियों की आवाज में मेरे देश की धरती। फिर मिलते हैं न्यूज ब्रेक के बाद।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। जाने अनजाने
1: तो एक बार फिर से जाने अनजाने में आज आपका फिर से स्वागत है। स्टूडियो की घड़ी समय बता रही है 8:03 और 14 सेकंड एग्जैक्टली। और मेरा सवाल आपसे यही था कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है, अपनी मर्जी से जीना, अपने सपने पूरे करना या अपनों के साथ सुकून से रहना। आप सिर्फ एक चूज कर सकते हैं। और बात हो रही थी आज़ादी के बारे में, एक देश जो सिर्फ आज़ाद नहीं होना चाहता था, बदलना भी चाहता था। आज हम 1947 को याद करते हैं जो अक्सर एक सीधी तस्वीर बनती है। अंग्रेज गए, भारत आजाद हुआ, तिरंगा फहराया और कहानी खत्म। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी, असल में वहां से तो नई कहानी शुरू हुई थी। क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, लोगों के लिए आजादी का मतलब था अब अपने फैसले खुद लेना, अपने बच्चों का भविष्य खुद तय करना, अपनी जमीन पर अपना हक महसूस करना, अपनी भाषा बोलना, अपने सपने देखना और सबसे बड़ी बात क्या पता है, अपने देश को अपने तरीके से बनाना। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना कठिन होगा।

जी हाँ, जो कहा था कि कहानी एक नई शुरू हुई थी, क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था, लोगों के लिए आजादी का मतलब था अब अपने फैसले खुद लेना, अपने बच्चों का भविष्य खुद तय करना, अपनी जमीन पर अपना हक महसूस करना, अपनी भाषा बोलना, अपने सपने देखना और सबसे बड़ी बात अपने देश को अपने तरीके से बनाना। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना कठिन होने वाला है। वैसे आपके लिए आजादी का मतलब क्या था, क्या है आपके लिए आजादी का मतलब, क्या है? अपनी मर्जी से जीना, अपने सपने पूरे करना या अपनों के साथ सुकून से रहना? बताइए, अगर आपको चूज करना पड़े तो कौन सा आंसर आप चूज करेंगे? फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं फिल्म आरक्षण से अगला गाना।

एक बात सोचिए, आज हम जब कोई बड़ी खबर सुनते हैं तो कुछ ही सेकंड में उसे हजारों लोग जान लेते हैं, लेकिन 1947 में एक खबर को सुनने के लिए लोग कितना इंतजार करते थे, रेडियो के आसपास बैठते थे और फिर जो सुनते थे उसे दूसरों तक पहुंचाते थे। किसी गांव में एक आदमी रेडियो सुनता, फिर बाहर आकर बाकी लोगों को बताता। किसी दुकान पर चर्चा होती, किसी चाय की दुकान पर लोग बहस करते, किसी घर में बच्चे पूछते, सच में आज देश आजाद हो जाएगा, और बड़े कहते हाँ। शायद उस समय एक रेडियो के आसपास बैठा परिवार पूरा ही सोशल मीडिया था। खबर वहीं से निकलती, वहीं चर्चा होती और वहीं उम्मीद बनती थी, और शायद चाय भी वही होती थी, क्योंकि भारतीय इतिहास में बड़ी बड़ी बातें और चाय न हो ऐसा कैसे हो सकता है। किसी ने चूल्हे पर पानी चढ़ाया होगा, किसी ने कहा होगा आज रात कोई सोएगा नहीं, किसी ने मिठाई बचा कर रखी होगी, किसी ने घर के बाहर झंडा लगाया होगा और किसी ने शायद पहली बार अपने बच्चों को समझाया होगा ये तिरंगा है। बच्चा पूछता इसमें तीन रंग क्यों हैं, और फिर एक पूरी पीढ़ी अपने बच्चों को समझा रही थी कि आजादी क्या होती है। तो सवाल मेरा बरकरार है कि आपके लिए आजादी का मतलब क्या है। फोन लाइंस खुली हुई है, फोन करिए, बताइए हमें कि आजादी आपके लिए क्या है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं अगला गाना धुरंधर 1 से।

फिरदौस 1947 का वो दिन वो रात, इनफैक्ट उस शहर चेहरे पर खुशी नहीं थी, यहीं से कहानी थोड़ी बदलती, क्योंकि 1947 का भारत सिर्फ जश्न में नहीं था, देश के एक हिस्से में राजनीतिक बदलाव हो रहा था, दूसरे हिस्से में तनाव बढ़ रहा था, लोगों के बीच डर पैदा हो रहा था, विभाजन की रेखा खिंच चुकी थी और बहुत से लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि आज़ादी के साथ बिछड़ना भी आने वाला है। किसी को अपना शहर छोड़ना होगा, किसी को अपना गांव, किसी को अपनी दुकान, किसी को अपना खेत और कुछ लोगों को अपना पूरा जीवन। लेकिन अभी उस रात कई लोग इन सब के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। उनके सामने सिर्फ एक सपना था, भारत आज़ाद हो रहा है।

एक छोटी सी कल्पना। मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी कल से हम आजाद हैं? पिता कहते हैं हाँ। बच्चा पूछता है, तो क्या मैं अब जो चाहूँ वो कर सकता हूँ? पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, आजादी का मतलब तो मन करे वो करना नहीं होता। आजादी का मतलब है अपने फैसले खुद लेना और उनके लिए जिम्मेदार भी होना। शायद उस बच्चे को उस दिन ये बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन आज ऑलमोस्ट 80 साल बाद अब सबको ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनके लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, भारत उनकी उम्मीद थी, उनका भविष्य था, उनकी आने वाली पीढ़ियों का सपना था, और इसी वजह से उन्होंने बहुत कुछ सहा। एक और घर, एक और कहानी। अब एक दूसरे के घर चलते हैं, वहां शायद रेडियो नहीं है, या रेडियो हो लेकिन सुनने की स्थिति नहीं। घर के लोग चिंतित है, बाहर का माहौल ठीक नहीं, पिताजी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, माँ बच्चों को अपने पास बैठाए हुए हैं। उन्हें पता है कि देश बदल रहा है, लेकिन उनके लिए सवाल है, हमारा घर बदलेगा या हम? कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं आम लोगों के लिए बहुत निजी सवाल बन जाती है। हम कहाँ जाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, दुकान का क्या होगा, खेत का क्या होगा, माँ कैसे ले जाएंगे, माँ को कैसे लेके जाएंगे, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? ये सवाल इतिहास के किताबों में छोटे लगते हैं, लेकिन जिस इंसान ने उन्हें जिया उसके लिए ये पूरी की पूरी दुनिया थी।

दोस्तों, भले ही ये सवाल काफी छोटे थे, पर कहीं ना कहीं इन लोगों की उम्मीद भी जुड़ी थी इनसे। इतना सब होने के बावजूद लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उम्मीद शायद इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक देश जिसने इतने साल गुलामी देखी, वो अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था। लोग सोच रहे थे बच्चे पढ़ेंगे, नई सड़कें बनेंगी, नए स्कूल खुलेंगे, गरीबी कम होगी, सबको बराबरी मिलेगी, भारत दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। और शायद किसी माँ ने अपने बच्चे को देखकर ये भी सोचा होगा, मेरे बच्चे को वो जिंदगी मिलेगी जो मुझे नहीं मिली। यही आजादी का सबसे खूबसूरत सपना था। और शायद आज हम 15 अगस्त मनाते हैं, तो हमें उन सपनों को भी याद करना चाहिए, क्योंकि आजादी सिर्फ अतीत की उपलब्धि नहीं है, वो भविष्य के लिए किया गया वादा भी है। तो वही सवाल मेरा बरकरार है कि आपके लिए आजादी का मायने क्या है? क्या है मतलब आपके लिए आजादी का? मतलब अपने लिए जीना, अपने सपनों के लिए जीना, या अपनों के लिए जीना? फिलहाल चलिए सुनते हैं अगला गाना।

एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने परिवार में सबसे पुरानी कौन सी कहानी जानते हैं? क्या आपकी दादी दादा ने कभी बताया कि 1947 के समय उन्होंने क्या देखा? किसी ने ट्रेन देखी थी, किसी ने जुलूस, किसी ने तिरंगा पहली बार फहराते देखा, किसी ने अपना घर छोड़ा, या शायद आपके घर में कोई ऐसा कस्सा जिसे सुनाते सुनाते बुजुर्ग की आवाज बदल जाती थी? अगर है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां शायद किताबों से इतिहास पढ़ेंगी, लेकिन परिवारों की ऐसी कहानियों से इतिहास महसूस करेंगी। तो आज के जाने अनजाने में हमने जाना कि हमने उस रात को महसूस करने की कोशिश की जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। एक तरफ रेडियो के आसपास बैठा परिवार, तिरंगी, मिठाइयां, गीत, उम्मीद, और दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान जिसका असर बहुत जल्दी लाखों जिंदगियों पर पड़ने वाला था। आजादी की सुबह आने वाली थी, लेकिन हर कोई उस सुबह को एक ही तरह से नहीं देख रहा था। किसी के लिए वो एक नई शुरुआत थी, किसी के लिए पुराने जीवन का आखिरी अध्याय, और किसी के लिए दोनों।

0: कार्यक्रम ऑलमोस्ट अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है, ऐसे में हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर हमें कॉल कर लगा चुकी है, तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। हाँ पायल, कैसे हो, सब ठीक है घर परिवार में? हाँ सब ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस के लिए सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को।
1: মুক্ত ভাবে যখন ভাবতে পারবো, স্বাধীন চিন্তা ভাবনা করতে পারবো, কোন একটা কিছু জটিলতার দিকটা না দেখে আমরা যখন সরল ভাবে চিন্তা করতে পারবো, আমাদের মনে যখন কুসংস্কার জিনিসটা মুছে যাবে, থাকবে না কোনো একটা কিছু নিয়ে, তো সেই যে মুক্ত চিন্তা ভাবনা সেটা আমার কাছে স্বাধীনতা। আর আরেকটা স্বাধীনতা হচ্ছে দিদি, সেটা হলো মানুষের স্বাধীনতা, মানুষ যেন স্বাধীনভাবে রাস্তায় অন্তত বেরোতে পারে, তারা যেন অত্যাচারিত না হয়, তো সেটাই আমার কাছে স্বাধীনতা।
0: थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। पहले बिल्कुल सही कहा आपने, अभी भी हम आजाद होके भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं आजाद शायद नहीं हुए हैं, कुछ चीजें अभी ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी, वीर जारा से आप चाहती थी कोई गाना सुना दूं आपको? हेलो
1: हाँ
0: हाँ, वीर जारा से आप चाहती थी कोई गाना सुना आपको, है ना? मैंने बोला कि वीर जारा से आप कोई गाना सुनना चाहती थी, है ना? ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे। ओके गुड नाइट। ठीक थी पायल, और सुनना चाहती है वीर जरा का कोई भी गाना। तो फिलहाल वीर जरा का जब आज आजादी का दिन है तो फिर ये गाना सुनना तो बनता है।

0: हमारी कहानी तो अभी लंबी बाकी है, पर क्या है ना कि समय की कमी हमें हमेशा खलती है। फिलहाल हमारे अगले जो श्रोता है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं ऑनलाइन आने का। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया अलर्ट में। जी अशोक जी, कैसे हैं? घर परिवार में सब ठीक है? जी, मैं सुनना चाहते हैं आप। ठीक है, नमस्कार। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से तक जिसके बारे में बात करना आसानी है, उस भारत तक जहां लोगों के हाथ में तिरंगा था लेकिन दूसरे हाथ में अपने घर की चाबी भी थी, जहां ट्रेनें सिर्फ यात्रियों की नहीं यादों को भी लेकर चल रही थी। चाहे एक बच्चा पूछ रहा था कि हम वापस कब आएंगे, और शायद किसी माँ के पास उस सवाल का जवाब भी नहीं था। जी हाँ, बात कर रहे हैं पार्टीशन की। फिलहाल सुन लेते हैं मेरे देश की धरती।

तो दोस्तों, इस आज के जो ये सफ़र है छायालों का, बस अब समाप्त करने का समय हो चला है। जी हाँ, कई सारी तस्वीरों के बारे में बात की, कई सारी घटनाओं के बारे में बात की, और जो आज़ादी का जो दिन है उसके बारे में जितनी भी हम बात क्यों ना कर ले, पर शायद वो बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो यादें कभी खत्म नहीं हो सकती हमारे जहन से। आज भले ही हम आजाद हैं, लेकिन आज भी उस दिन की त्रासदी बोलिए या फिर खुशी बोलिए, जो भी कह लीजिए, किसी के लिए त्रासदी थी, किसी के लिए खुशी थी, वो चीजें हम शायद कभी भी भूल ना पाए, और इतिहास के पन्नों पर वो हमेशा यूं ही बना रहेगा। जाने का वक्त हो चला है, और थोड़ी ही देर पहले कॉल आया था हमारे पास प्रशांत धर जी का बेरगाछिया से, सुनना चाहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर फिल्म से, तो चलिए सुनवाते हैं और हम भी सुनते हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि कभी कभी सच्ची जो सच्चा इतिहास है किताबों में नहीं, लोगों की आवाज से बचा रहता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से हमारी तरफ से तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, हमारा देश हमेशा आगे बढ़े, और हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जिसे देखकर आने वाली पीढ़ी कह सके, हाँ, हमने मिली हुई आजादी की कीमत समझी। जाने अनजानियों की कहानियां भले ही खत्म न हुई हो, पर कहें कि समय जरूर खत्म हो चला है। फिलहाल के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि कहते हुए मैं पापी अनूंगी आप सभी से विदा। मिलूंगी किसी और दिन किसी और समय कुछ और बात और गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूं ही 107 FM रेनबो है ये। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा।

0: এই গানটি শুনে চোখে জল এসেছিল প্রত্যেক ভারতবাসী। তোমাকে বলতে হবে এই গানটি কোন ছবির।
1: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত হোয়াটসঅ্যাপ বা SMS করে 9903659992 নম্বরে। আর খেলতে থাকুন সিনে সিনে সিনে কুইজ। ঝলক দিখলা জা রিলিজের প্রথম খবর। ঝলক দিখলা জা
2: मिर्जापुर का एक ही दरवाजा है, दूसरा कोई नहीं खुलेगा। अरे नहीं खुला तो तोड़ देंगे। रवि किशन इज डैशिंग मैन, तुम्हें बुझते पे छो। आत्रेवार बिहू तुम्हें मिर्जापुर द मुभिर ट्रेलर कथा बोलते। आर सीरीजे चलते ना, शुधुमात्र सीरीज करे होइनी, 1-2-3 सीजन करेओ होइनी। एबारे सरासरि थिएट्रिकल रिलीज, एकदम बड़ो पर्दाय मिर्जा।

परगन मोहित चौहान शिखर रविजदनी श्रुति बलकर कंठे अंजना अंजनी फूल थे गई।